0: see Sakura, push to the
1: Radio Network.
2: सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
3: हतार में बाटो काट्दै हुनुहुन्छ जति हतार भए पनि एकचोटि दायाँ तिर हेर्नुहोस् अनि एकचोटि बायाँ तिर पनि हेर्नुहोस्
4: हरेक पल्ट बाटो काट्दा दायाँ बायाँ हेरेर सुरक्षित रूपमा सड़क पार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन अन्दाज गर्नुहोस् अनि मात्रै बाटो काट्नुहोस् ल
5: सिपदी तथा टाटा मोटर्सको सहकार्य
6: सुनते मेरे कपड़ा पैकिंग कर दूं तो सैमजी को मिसेस लाई कैंसर उपचार कराऊं ना इंडिया संगल लिए रदान कर रही हूँ
3: ए हुरा अनि सुनने ता अब कैंसर को उपचार सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट भरतपुर में नहीं हुआ नहीं नेपाल में पहले पटक अत्याधुनिक ब्लेडियन ट्यूबिंग भाई को 60 काउंस या हाइपर आर्क लगाए का अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग करी मस्तिष्क में बने को ट्यूमर फोक्सो को कैंसर स्तन कैंसर घाटी तथा टाउको संबंधी कैंसर पेट तथा कॉलेज संबंधी कैंसर पाठे घर को मुख गर्भाशय तथा मूत्राशय संबंधी कैंसर तथा अन्य कैंसर को उपचार हुन्छ कैंसर भाई को ठाउँ को पहचान गरी रेडिएशन को माध्यम बाट पूर्ण रूप में निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ सरकारी अस्पताल की सेवा शुल्क में उपचार हुनु का साथ ही नेपाल सरकार बाट प्रदान गरिने कैंसर पीड़ित का लागि 1,00,000 सम्म को छूट को व्यवस्था पनि छ
6: यस्तो सुविधा रहेछ म अब कैंसर उपचार गराउन सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट मा नै लिएर जान्छु
7: फोन 0 4 4 9 3 5 55

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Soundcheck. City of Him. In studio time.
4: It's 7 a.m. We have to start with you.
5: टाइम चेक को साथ न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंभू

नमस्कार पूर्व नेपाल के पहले सामुदायिक रेडियो सुने थे 101.2 मेगाहर्ट्ज बाटा देश का विभिन्न भाग www.sunefm.com संसार भर एक साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 7 बजी सोलो समाचार लिएर आइपुगे म अंजु कार्की सोलो समाचार को शुरूआत में मुख्य खबर का शीर्षक सगरमाथा में बाटो खोलने डोरी टांगने काम सकियो आर्मन सीजन औपचारिक ग्रुप में शुरू सोलुखुंड एसए नतीजा सार्वजनिक 91% विद्यार्थी उत्तीर्ण सामुदायिक विद्यालय को वर्ष सन् 2026 को वसंत ऋतु में सगरमाथा में 3 नेपाली र मक्कालो में 2 विदेशी आर्मी को मृत्यु पेशी को नदी का प्रति जेमचेली खुपिके चिंता सुधार का लगे 7 बजे मार्क्सित अल्टिमेट विदेश स्वास्थ्य ज्योति में लैब सेवा संचालन में ओखल हिमा बजार अनुगमन में 18,000 वर्धित खाद्य सामग्री बरामद र पाकिस्तान हराए पछि बंगलादेश का खिलाड़ी को आईसीसी टेस्ट वरीयता में सुधार अब समाचार विस्तार में इस वर्ष को वसंत कालीन सगरमाथा आर्मन सीजन में रूप फिक्सिंग डोरी को सहायता बाटो बनाने टोली ने सगरमाथा को शिखर में सफलतापूर्वक डोरी फिक्सिंग मिशन पूरा सीजन को पहले सफल सगरमाथा आर्मन समेत पर्वत आर्मन संचालक संघ नेपाल का महासचिव ऋषिराम भंडारी का अनुसार डोरी टांगे अगाड़ी बढ़े टोली सगरमाथा को चुचुरो में पुगे मार्ग पूर्ण रूप में खोल सफल सेवन समेत ट्रक्स को जानकारी दिए अनुसार हिजो बिहान 10:25 में रोप फिक्सिंग टोली जिसमें सेवन समय ट्रक्स कटिंग शेर्पा निमटेम्बा शेर्पा पासांग नर्वे शेर्पा और बिंदी शेर्पा सहित अन्य सदस्य सगरमाथा को दक्षिण

दुर्गा बाद धरी मेरे सोनामा आज तुझी परी आहा चुन गई तू दुर्गा बाद धरी रूप चरण से कोमल रंगत भूले क्या झंझट आहा नाच ले चल से माया के छल से साथे को मान से आहा मैंने देखा है रंग पर तो मैंने

0: World's number one tire brand.
1: Yes, take off 16th anniversary offer. Jati Matayu, Kiki Matayu. Budget your package for Pike Design. About internet TV, the Wi Fi 6 router, but it's Kiki Matayu. Classic take off 3 plans, Karima, Harikota. Teen Janarai, Teen Mugna Internet Bonus. Ramasi 8 Janarai, who is Baravatarko Internet Bonus. Sampata 980100447. Classic check. Jati Matayu, Kiki Matayu.
2: के तपाईं झाड कम्मर घुरा गर्दन दुख्ने समस्या युरिक एसिड बाथ रोग नसा सम्बन्धी समस्या वा अन्य कुनै दीर्घ रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ
3: यस्ता समस्याको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट सर्वसुलभ उपचारका लागि बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई आज सम्झनुहोस्
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओपीडी सेवा
2: विशेषज्ञ ओपीडी सेवा
3: निशुल्क औषधि वितरण
2: सशुल्क फार्मेसी सेवा
3: फिजियोथेरापी सेवा
2: अकुपंचर सेवा
3: योग परामर्श सेवा
2: क्रियाकल्प सेवा
3: पूर्व कर्म पंचकर्म सेवा
2: क्षार सूत्र सेवा
3: जलौका सेवा
2: अग्निकर्म लगायत अन्य विभिन्न सेवाहरू
3: प्रयोगशाला सेवा बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म
2: विस्तृत जानकारीका लागि
3: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय बागमती करिडोर कैरीगाउँ काठमाडौँ फोन नम्बर 01-4110-6690 98514-2403

अनुरक्षण अभियान यात्रु को सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात को सेवा सुधार करने लक्ष्य र काठमाडौं में 1700 जना महिला को पाठ्यकर मुख कैंसर परीक्षण बिहान 9 बजे को नेपाल खबर सकियो बिहान 10 बजे नेपाल भाषा में दिवसो 12 बजे नेपाली भाषा में नेपाल खबर लिएर फेरि आउने छन् उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौं में मध्यम मेगाहर्ज उज्यालो अनलाइन .com पढेर सुन्ने गर्नुहोला शरीरलाई स्वस्थ राख्न

0: इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही ये कॉलेज में विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभा पहचान करी उजागर करना मदद करते आयोग शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासी वर्ल्ड कॉलेज साबुन सुशीवादी संपर्क नंबर 9803623 82 9803623 87
1: युवा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मुख्य दुधकोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मात्य दुधकोशी को समृद्धि मात्य दुधकोशी गांवपालिका सोलकुंड के सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्तों बुधवार सांझ 7:30 देखिए 8 बजे समय सूर्य एफएम 101.2 MHz ऑनलाइन और सूर्य एफएम को पेज मार्फत दूसरी सुन सकूस कहाँ पुगे कहाँ पुगे जनप्रतिनिधि को मुझे विनियोजित बजेट को काम र प्रभावकारिता नागरिक को गुनासो र सुनवाई समग्र स्थानीय तह को विकास र सिद्धि नेता सोलन गांव पालिका सोलखुंड को सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो नेता सोलन हरेक महीना को पहले सोमवार और अंतिम सोमवार 7:30 देखि 8 बजे समय सुरू एफएम 101.2 MHz www.suruefm को पेज मार्फत विश्वभर सुन सकूश बाल बालिकालाई लागू औषध दुरूपयोग हुँदछ लागू औषध सामाजिक अपराध हो कोही कसैले प्रयोग नगरौं बाल बालिकालाई लागू औषधको प्रयोगबाट